आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-05 ऑन बोर्ड GSLV F-17 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। Government forms 31 member joint parliamentary committee to examine foreign contribution regulation amendment bill 2026. Supreme Court of India to host BRICS Chief Justices Forum in New Delhi beginning today. India sends two more aircraft with relief materials to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood affected areas.